अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है। साथियों, मेरा दिल भी नहीं भरा है, लग रहा है बस सुनती जाऊं सुनाती जाऊं, लेकिन घड़ी का इशारा हो गया है तो बस एक और गाना। और जाते जाते आशा जी के लिए मैं यही कहूंगी कि वो ऐसी ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अच्छी रहें, गाती रहें और हम सबका दिल लुभाती रहें। आप आज का एपिसोड फिर से सुन सकते हैं soundcloud.com/chaitimeradio पर। आप मुझे लिख सकते हैं facebook.com/chaitimeradio पर और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। तो दोस्तों, जाते जाते आपके लिए हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से आरडी बर्मन के संगीत के साथ दम मारो दम। मैं सोच रही थी दोस्तों कि इस गाने को लूं या ना लूं, पर इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड प्लीज टेक इट विथ अ राइट स्पिरिट। और फिर आशा जी ने चुना है, आशा जी ने गाया है, तो हम ज़रूर सुनेंगे इस गाने को। और आशा जी भी बड़ी दिलचस्प बात बताती हैं इस फिल्म के संगीत के बारे में। सचिन देव बर्मन डिडंट वांट टू कंपोज फॉर दिस फिल्म बिकॉज इट डेल्ट विद ड्रग्स एंड हिप्पीज, सो पंचम टुक ओवर। ही गेव द आइकॉनिक दम मारो दम सम रियली एनचैंटिंग बैस एंड हरकट्स।